0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है और इस पर ईमानदारी से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल फिलीपींस के मनीला में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन, अंतरिम प्रधानमंत्री इली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरीन ग्रिडियानो से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 19 तारीख से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाउकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपजे में आकाशवाणी संवाददाता सुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाउकोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा शुरू हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि

0: और जन जागरूकता के क्षेत्र में आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाई है। आज भी ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ सूचना शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी की सेवाएं जारी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहैन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। उधर चीन के चांगझो में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना दी है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुडा को हराया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Subhadra Ramachandran. President of North Macedonia, Gordana Silonovska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashwani correspondent in Skopje, North Macedonia, Ms. Davkova said earlier she was impressed by India's long history and also spirituality. She said after meeting President Murmu, she was very much impressed. She said after meeting President Draupadi Murmu, she strongly felt that only women can change the world.
2: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
1: Senior BJP leader, Union Minister JP Nadda, has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion.
3: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
1: The Union Minister said that NDA government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has taken up this matter very seriously. He reiterated the government's stand that it is ready for a discussion on NEET issue in Parliament and opposition should decide the duration of the debate. Mr. Nadda said Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines yesterday. In a social media post, Dr. Jayashankar said that India-Canada cooperation has been steadily growing. He said that the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. The External Affairs Minister also met with his New Zealand counterpart, Winston Peters, and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. They also discussed enhancing maritime cooperation between India and New Zealand. National Broadcasting Day is being observed today. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from Bombay Station under the Indian Broadcasting Company. On 8th of June in 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio AIR. This day highlights the pivotal role broadcasting has played in

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4

0: 5555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
2: With deep feelings, emotional intelligence.
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
5: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
0: पीओजे के में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफलमैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss neat paper leak issue in parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
5: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation

0: not listening to you.
1: इधर उधर
0: I'm not listening to you. Okay, I'm not with her.
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: Okay, that's it.
2: रूपाली ढौ अनुष्ठानटीर एबार शुनाबले लैछो अंगराग महंत आरु रूपज्योति देवीर कंठत रोद छबिखनर पराय गीत गीतर कथा राजदीपर

0: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
1: Our voice gets you heard everywhere.
0: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
1: 6900453528।
0: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সৰ্বক্ষণ সৰ্বত্ৰ আপোনাৰ সৈতে।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি আৰু 12:05ত ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेते बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
4: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
3: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है।

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामची जिले में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Minister said initiatives such as the Information Fusion Center India Ocean Region, the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative, and the deployment of Indian naval assets are helping counter piracy, trafficking, and the narcotics trade while ensuring secure maritime commerce. News just in, Rajya Sabha has been adjourned till 2 p.m. The 23rd Commonwealth Games will begin in Glasgow, Scotland this evening. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalist Neeraj Chopra, Meerabai Chanu and Lavlina Borgohain are set to represent India at the Games. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिष पर है. मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर. अभी स्टूडियो के घड़ी में 12:10 हुए हैं और हम आरंभ करते हैं सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण.

सनी भाई, सबसे पहले तो आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज के कार्यक्रम सूची की। अभी कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम तरन्नुम। अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे 1:05 पर। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे कार्यक्रम स्वर छाया 1:10 पर। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का वक्त होगा 1:40। दिन के 2 में दी न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत रंगीले 2:30 पर। और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी जानकारी आज के प्रसारण सूची की।

सैनिक भाइयों, अब प्रस्तुत है आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है अरमान मलिक की आवाज में अजहर फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं प्रशून रश्मि विराग ने और संगीत दिया है अमाल मलिक ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

सनी भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अभी आपने सुना जावेद अख्तर के बोल और अनु मलिक के संगीत से सजे फिल्म बादशाह से गीत अभिजीत और साथियों की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं अगला गीत बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में गजनी फिल्म से। बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने और संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवाएंगे फिल्म चक दे इंडिया से गीत। इसके के बोल लिखे हैं जयदीप साहनी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। आवाज है अनुष्का मनचंदा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

हम कुछ ही पलों में लेकर आएंगे कार्यक्रम तरन्नुम। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कल की कार्यक्रम सूची के बारे में।

सनी भाइयों, कल शुक्रवार है और हर रोज की तरह कल के प्रसारण का आरंभ होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 12:12। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे 1:05 पर।

समाचार के बाद हम लेकर आएंगे कार्यक्रम सबरंग 1:10 पर। कार्यक्रम तरन्नुम का वक्त होगा 1:40। दिन के 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीतिका 2:30 पर। रोजाना की तरह कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गजल गुलाम अली की आवाज में सजदा एल्बम से।

सनी भाई, आप सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम। अभी आपने सुना हरिहरन की आवाज में गजल। अगला गजल हमने लिया है तलत अजीज की आवाज में, महबूब एल्बम से।

तरन्नुम कार्यक्रम का अंतिम गजल आइए सुनते हैं, अनूप जलोता की आवाज में, कशिश एल्बम से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आपके साथ हूँ मैं जयश्री।

सनी भाई, हम आपको बता दें कि आप हमारे प्रसारण अब से लेकर 1:40 तक आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 521 मीटर पर।

सैनिक भाइयों, हमारे इस खूबसूरत से जिंदगी को और खूबसूरत बनाता है हमारे चारों ओर के वातावरण। हर एक मौसम वातावरण को रंगीन बनाता है। हर ऋतु के हिसाब से मौसम अपना रूप बदलता है।

दुनिया के तमाम देशों में चार ऋतुएं होती है, बहार, गर्मी, बरसात और सर्दी। वही भारत में ऋतुएं हम छह मानते हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर या शीत। हिंदी सिनेमा जगत में हर एक मौसम को बेहद खूबसूरती से दिखाया है गीतकारों।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

हिंदी गीतों में मौसम के भिन्न रूपों को लेकर काफी सारे गीत बने हैं, परंतु बरसात के मौसम को लेकर बने गीतों की तो बात ही कुछ और है। शायरों गीतकारों ने बदलते मौसम को मन के जज्बातों के साथ भी तुलना किया है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं, साजिया मंजूर की आवाज में एक पंजाबी गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं देश के भिन्न प्रांतों के भाषा पर आधारित गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। अभी आपने सुना शारदा सिन्हा की आवाज में भोजपुरी लोकगीत केकरा से कहा मिले जाला एल्बम से। अब आइए सुनते हैं अगला गीत, एक गुजराती मधुर लग्न गीत एल्बम से।

सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं अंतिम गीत विनोदम फिल्म से। ये तेलुगु गीत गाया है एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा ने।

0: keeping the Indus Waters Treaty in abeyance.
1: Our position on the Indus Water Treaty remains clear and consistent. Cooperation on the basis of mutual trust and goodwill cannot be expected when cross-border terrorism is regularly deployed as an instrument of state policy. As for the Union Territory of Jammu and Kashmir, it has always been, is, and will remain an integral and inalienable part of India. This is a constitutional and legal reality that Pakistan deliberately chooses to ignore.
0: Heavy rainfall continues to severely disrupt normal life across south and central Gujarat, leading to widespread waterlogging, swollen rivers and road closures. Relief and evacuation operations are underway on a mission mode in rain-affected districts, particularly Surat and Valsad. Union Home Minister Amit Shah has assured all possible assistance to Gujarat from the Centre for Rain Relief. Our correspondent reports that senior ministers and secretaries have been deployed to oversee operations on the ground.
2: Torrential rains have brought normal life to a complete standstill across several parts of Gujarat, with South and Central Gujarat districts facing the maximum impact. According to official data from the State Emergency Operations Center, Umrada in Surat district recorded over 11 inches of rainfall within 6 hours today, while Umargam in Valsad received nearly 10 inches during the same period. Considering the rising water levels and flood-like conditions, Valsad District Administration has ordered all factories and industrial units to remain closed today. Relief and rescue operations are progressing on a mission mode, with NDRF teams actively evacuating stranded citizens. Chief Minister Bhupendra Patel is closely monitoring the situation from the State Emergency Operations Center in Gandhinagar. Aparna Khond, Akashwani News, Ahmedabad.
0: Meanwhile, incessant rain continues to wreak havoc in Assam, with 10 more flood-related deaths reported yesterday, taking the toll to 41. Over 6 lakh people have been affected across the state in 40 revenue circles. Relief and rescue operations are continuing in the affected districts as several rivers continue to flow above the danger level. The Intermeteorological Department has issued a red colour warning for very heavy to extremely heavy rainfall over parts of Gujarat and Madhya Maharashtra for today. East Rajasthan, Madhya Pradesh, Konkan, Goa, Manipur, Mizoram, Tripura and Nagaland may experience heavy to very heavy rainfall for the day. The weather agency has forecast heavy rainfall over northeast Gangetic, West Bengal, Bihar and Jharkhand till Sunday. The 23rd Commonwealth Games will begin in Glasgow, Scotland this evening. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the Games. It will feature just 10 sports, 9 fewer than at Birmingham in 2022, with competitions spread across 4 venues with an 8-mile corridor. Athletics, swimming, 3x3 basketball, track cycling, weightlifting, bowls, artistic gymnastics, netball, boxing and judo make up the schedule for the game. The Indian contingent comprises 125 members, including para-athletics. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for persons involved in paper leaks. Prime Minister Narendra Modi assures that protecting students' future remains government's top priority. Government ready to discuss any issue, including NEET, in Parliament, says Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. India calls for zero tolerance against terrorism at ASEAN ministerial meeting in Manila. India rejects Pakistan's remarks on the Indus Waters Treaty at UNSC, says treaty to stay in abeyance until cross-border terror ends. And Glasgow Commonwealth Games set to begin this evening, 125 Indian athletes to participate. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान, भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
4: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा साते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे यह ठीक नहीं है।
3: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
5: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
3: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
6: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
3: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन

0: खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
3: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगे। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात

0: का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजर डान के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौतों में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार एप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकोर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सैनिक भाइयों, समाचार के बाद एक बार फिर आप सभी का आज के

सैनिक भाई प्रस्तुत है आज की प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत रंगीले। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है गीता दत्त की आवाज में आर पार फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है ओपी नैयर का।

गीत रंगीले कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में हावड़ा ब्रिज फिल्म से ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं उमर जलाबंदी ने और संगीत है ओपी नैयर का।

गीत रंगीले कार्यक्रम में अभी आपने सुना कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजे हावड़ा ब्रिज फिल्म से ये गीत आशा भोसले की आवाज में। अब आइए सुनते हैं शमशाद बेगम की आवाज में बहार फिल्म से गीत। बोल है राजेंद्र कृष्ण के और संगीत है एसडी बर्मन का।

गीत रंगीले कार्यक्रम में अभी आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में लफंगे परिंदे फिल्म से ये गीत। आप सुन रहे हैं आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत रंगीले। अब आइए सुनते हैं अगला गीत जस्ट मैरिड फिल्म से सुनिधि चौहान की आवाज में।

अब आइए सुनते हैं अगला गीत, दिल धड़कने दो फिल्म से। यक्षिता शर्मा, मनीष कुमार टिप्पू, फरहान अख्तर, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में दिल धड़कने दो फिल्म से।

0: अब आइए सुनते हैं गीत रंगीले कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहित चौहान और पलक मुच्छल की आवाजों में। फिल्म है बजरंगी भाईजान।
1: लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी मुर्गे की बांग हमें

सैनिक वायु इसी गीत के साथ होता है आंध कार्यक्रम गीत रंगीले। अभी वक्त हो चुका है आज के प्रसारण के समापन का। कल फिर होगी मुलाकात कुछ सदाबहार गीतों के साथ। तब तक के लिए जयश्री को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के आज के एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, बरसात का मौसम आ गया है, आप इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन ये जो मौसम आता है तो अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर आता है। हर मौसम के साथ ऐसा होता है, तो परेशानियां क्या होती हैं वो तो हम ध्यान नहीं देते हैं, परेशानियों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, पर हाँ, जो परेशानियां हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करें या उस पर कुछ असर डालें उनको जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। तो रेडियो डॉक्टर तो आपको यही बताता है कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। आज का विशेष अंक इसीलिए ज्यादा खास हो रहा है क्योंकि जो ये मौसम है इसमें वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बहुत बढ़ जाती हैं। क्या होती है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस और क्यों बढ़ जाती हैं और हम कैसे इससे बच सकते हैं, ये जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। तो हमारे जितने सुनने वाले हैं उन सबसे ये अनुरोध कि आज का ये अंक भी बहुत ध्यान से सुने, जैसे आप हर अंक को सुनते हैं। और आपका इंट्रोडक्शन कराती हूं आज के रेडियो डॉक्टर के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर।
2: थैंक यू शालिनी मैम और मेरे सारे लिसनर्स को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून।
1: तो जैसा मैम हमने बताया कि मच्छरों की तादाद खास तौर पर बरसात के मौसम में तो बहुत होती है। वैसे तो हम अगर कहें तो हमेशा ही मिलते हैं। मच्छर ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि ये कभी खत्म होंगे कि नहीं और परेशान भी बहुत करते हैं, लेकिन उतना तक तो ठीक है, पर जब ये बीमारियां फैलाते हैं और बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनसे संभलना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो मैं ये सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं ये कौन कौन सी हैं, कैसे फैलती हैं?
2: जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं बेसिकली वो डिजीजेस होती हैं जो जैसे एनिमल रिजर्वेयर्स होते हैं, पिग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनमें ये जो डिजीज कॉजिंग वायरसेस या ऑर्गेनिजम्स हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बट उसमें ये डिजीज नहीं कॉज कर रहे हैं, उसमें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं थ्रू सम वेक्टर, थ्रू सम मीन्स, लाइक मस्किटोज हो गए, मस्किटोज में भी एडीज एनोफिलीज और क्यूलेक्स होते हैं, या फिर जैसे एक सैंड फ्लाई होती है, एक सेटसी फ्लाई होती है, या स्नेल्स के थ्रू या कुछ और ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो हमारे को ह्यूमंस को डिजीज ट्रांसमिट करते हैं और फिर ह्यूमंस में दे कॉज सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन। सो फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस थ्रू सम मीन्स, थ्रू सम वेक्टर्स, दीज आर कॉल्ड वेक्टर बॉर्न डिजीजेस।
1: अच्छा, इसी में जूनोसिस भी आ जाता है, जूनोटिक।
2: मैम जूनोसिस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो जूनोसिस है दैट इज कॉजिंग डिजीज इन बोथ द एनिमल्स एंड ह्यूमंस।
1: ओके,
2: वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आर other diseases in which these microbes are multiplying in these animals, they are not causing, ये उसमें डिजीज कॉज नहीं कर रहे हैं, बट जब ये ह्यूमन ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं तो ह्यूमन्स में डिजीज कॉज करते हैं।
1: और मस्किटो इसका एक साधन बनते हैं ट्रांसमिट होने का। जी, और भारत में भी अगर हम बात करें कि कितना भारत में लोग इससे प्रभावित होते हैं तो काफी बड़ी संख्या है।
2: मैम इंडिया इज एंडेमिक फॉर मोस्ट ऑफ द वेक्टर बॉर्न डिजीज। आप मलेरिया ले लीजिए, चिकनगुनिया ले लीजिए, डेंगी ले लीजिए, लिशमानियासिस ले लीजिए, या फिर आप जिका फीवर और येलो फीवर कम रैम्पेंट हैं, बट इंडिया इज एंडेमिक फॉर दीज डिजीजेस बिकॉज हम ट्रॉपिकल कंट्री है, वी आर नियर दी हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट, तो वहां पे जो ये मच्छर हैं, जो ये मस्कीटोज हैं, इनका ब्रीडिंग बहुत ज्यादा है, सो वी हैव हाई नंबर ऑफ दीज वेक्टर्स।
1: तो इस कारण से जब ये हमें इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित कर रहे हैं तो हमें इनके बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपना बचाव भी इनसे कर पाएंगे। तो आप लोगों ने सुन लिया कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है हम पूरी तरह से इस पे डिवोट करेंगे कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कौन सी हैं और ये कौन कौन सी बीमारियां हम लोगों के अंदर यानी इंसान के अंदर पैदा करती हैं और उससे हमें क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से हम इसे बचाव भी कर सकते हैं। इसमें खासतौर पर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया पर भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा गाना सुनेंगे और फिर लौट कर आते हैं और ढेर सारी बातें होंगी ये सब बीमारियों पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, इसी तरह से सुनते रहिए, जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नाचने का मन है तो नाच लीजिए, छम छम छम छम, कोई मना नहीं कर रहा है। खुश हुइए, नाचिए, गाइए, आपको मजा लेना चाहिए, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। लेकिन बस ध्यान ये रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ना बिगड़े, और इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, रेडियो डॉक्टर सुनना है, जो हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं FM रेनबो 102.6 पर दोपहर 3 बजे, और साथ ही साथ इसका प्रसारण होता है प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। तो आप लोगों ने विषय तो सुन ही लिया है, आज हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस पे बात कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता है डॉक्टर साहब जो लाइन पर जुड़ गए, फोन लाइन पर कुछ पूछना चाहते होंगे तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार,
1: मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोड़ी लोनी जिला गाजी।
0: जी यामीन जी, अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
2: नमस्ते जी।
1: मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे बरसात का मौसम हो गया तो इसमें मच्छर वगैरह भी ज्यादा हो जाते हैं, तो डेंगू वगैरह बुखार भी चलता है
2: जी,
1: तो ये इसका घर पे रहकर भी उपचार किया जा सकता है डेंगू का, या हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ता है?
2: देखो, जो डेंगू होता है ना वो 3 फेजेस में होता है, ठीक है। एक होता है कि जो माइल्ड डेंगू है, फिर मॉडरेट सीवियर। तो माइल्ड वाला जो डेंगू है उसके लिए आपको एडमिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। माइल्ड वाला हो गया कि आपको फीवर हो रहा है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, लेकिन कोई रेड फ्लैग साइंस नहीं है, जैसे पेट दर्द हो गए, उल्टी हो गए, या फिर ज्वाइंट स्वेलिंग्स हो गई, या फिर पीलिया होने लग गया, या फिर सांस में दिक्कत होने लगी। तो अगर ऐसे कोई रेड फ्लैग साइंस नहीं है और प्लेटलेट आपके 50,000 के ऊपर है, या कहीं से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो फिर आप घर रह के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट अगर दिक्कत वाली चीजें आती है, जैसे जो हमने रेड फ्लैग साइंस भी डिस्कस की, या प्लेटलेट 50,000 के नीचे जाता है, या कहीं से भी ब्लीडिंग होती है, देन ऑब्वियसली पेशेंट को भर्ती कराना बेटर है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। अदरवाइज ट्रीटमेंट के लिए आपको घर में रहिए, अपना अच्छे से हाइड्रेशन करिए, दवाई पैरासिटामोल लीजिए और हाइड्रेशन अपना मेंटेन करिए।
0: तो ये जो आपने बताया सिर्फ डेंगू के केस में है कि ये चिकनगुनिया मलेरिया के केस में भी यही चीज लागू होती है?
2: चिकनगुनिया के केस में भी आप ये कर सकते हो, अंटिल अनलेस कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। मलेरिया के में भी माइल्ड मॉडरेट और सीवियर मलेरिया होता है, लेकिन उसके रेड फ्लैग साइंस डिफरेंट है। मलेरिया में जैसे आपका ये होता है कि जॉन्डिस अगर बहुत बढ़ गया या उल्टियां आ रही हैं, और अगर लिवर एंजाइम्स हमें देखने होते हैं वो बहुत डीरेंज हो रहे हैं, ये तो लिवर का हो गया। उसके अलावा अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो वो इंडिकेटर है कि कहीं पे खून टूट रहा है, रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं। या जो मलेरिया उसमें सिर्फ प्लेटलेट्स कम नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स और जो आपके जिनको हम इम्यून प्रोटेक्टिव सेल्स लिम्फोसाइट्स बोलते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो अगर वो गिर रहे हैं, या फिर आपका यूरिन ब्लैक हो रहा है, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तब डेफिनेटली मलेरिया ज्यादा सीवियर है एंड यू डेफिनेटली आपको फिर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर माइल्ड मलेरिया है, सिर्फ ठंड के साथ ब्रक्सिज्म, दांत किटकिट के साथ अगर बुखार आ रहा है, और अगर आपको कोई रेड फ्लैग साइन नहीं है, तो एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट लेके आप घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं
0: जी। तो जैसा आपने बताया, खासतौर पर जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस भारत में है वो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ही है, तो इन तीनों का हम अलग अलग अगर समझे कि क्या उनमें सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है, एक शॉर्ट में और एक आम भाषा में अगर हम समझाना चाहें तो।
2: एक तो इनके वेक्टर्स डिफरेंट हैं, जैसे मलेरिया के लिए हमारे पास फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है, डेंगू चिकनगुनिया के लिए हमारे पास एडीज होता है। तो एक तो इनके वेक्टर्स मस्किटो हैं बट डिफरेंट है, एडीज डे टाइम मस्किटो है, मलेरिया वाला नाइट टाइम मस्किटो है। तो एडीज वाला अगर आप देखोगे, कई बार आपके घर में व्हाइट ब्लैक स्ट्राइप्स होती है मस्किटो के लेग्स पे, सो दैट इज मोर, वो डे टाइम में ज्यादा एक्टिव है, एनोफ्लीज वाला रात को ज्यादा एक्टिव है। एक तो ये डिफरेंस है। मलेरिया जो है ना, मलेरिया आपका मल्टी सिस्टम अफेक्ट करता है, इन द सेंस कि मलेरिया आपके लिवर सेल्स में और रेड ब्लड सेल्स में मल्टीप्लाई करता है और उनको डिस्ट्रक्शन करता है। इस वजह से इट इज लाइक मोर सीवियर, इन द सेंस कि आपको जॉन्डिस होगा, आपका लिवर डैमेज होगा, आपके लिवर एंजाइम्स रेज करेंगे, और अगर आरबीसीज में जाके डैमेज कर रहा है तो आपका हीमोग्लोबिन राइज फॉल कर सकता है, और उसमें हीम राइज करेगा तो वो किडनी फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है। ब्रेन में जाता है तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया बोलते हैं, तो उसमें आपके जो आपका सेंसोरियम है, जो आप जैसे अभी मैं और आप नॉर्मल बात करें, पेशेंट बेहोशी में आ सकता है, दौरा पड़ सकता है, तो मलेरिया प्रेजेंट्स लाइक दैट अगर कॉम्प्लिकेटेड है। डेंगू में आपका जनरली जो डेंगू वायरस है वो आपके प्लेटलेट्स पे और कोएगुलेशन पे अफेक्ट करता है, बहुत सीवियर होता है तो आपके ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, तो उसमें लीकेज क्रिएट कर सकता है, तो आपको जगह जगह पे पानी भर सकता है, पेट में भर सकता है, आपके हार्ट के अराउंड जो पेरिकार्डियम है उसमें है, लंग्स में आ सकता है, या बहुत ज्यादा सीवियर है तब ब्रेन में जाता है, ठीक है। और जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया में जो मेनली अगर आप डेंगू और चिकनगुनिया का डिफरेंस देखना चाहेंगे, तो डेंगू में आपका रैश और हेमरेजिक जो ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज्यादा हैं। चिकनगुनिया में आपका रैश आता है और जॉइंट पेन ज्यादा सीवियर होते हैं। इट इज कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लिकेटेड दैन डेंगी।
0: जी, ऐसा ही एक प्रश्न आया है, उमेश कुमार जी ने लिखा है मैसेज खयाला से। नमस्ते मैडम जी, चिकनगुनिया होता है तो उसके लिए क्या लक्षण है, और ये भी मच्छर के काटने से होता है, इसके लिए क्या करें? तो ये मतलब इन्हें ये दो पता होंगे, ये चिकनगुनिया के बारे में नहीं पता है कि ये भी मच्छर से ही होता है।
2: डेफिनेटली चिकनगुनिया भी एडीज मॉस्किटो से ही होता है।
0: जी, तो हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर।
2: जी
0: हेलो।
3: हेलो नमस्कार, नमस्कार। मैम
0: जी नमस्कार,
3: कैसी हो? रेनू पर्यावरण सब कैसे हैं?
0: सब बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं?
3: मैं बहुत बढ़िया मैम।
0: अपना नाम बताइए तो हम। जी,
3: डॉक्टर साहब का सुनते तो फिर ठीक हो ही जाते हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और ठीक रहना भी चाहिए।
3: मैडम अमित त्यागी बोल रहा हूँ, ग्राम नंगोला।
0: जी जी जी अमित जी, आपसे तो अब रोज बात हो रही है हमारी।
3: और मैं नेत्रहीन दिव्यांग मैम।
0: जी मैं जानती हूँ आपके बारे में।
3: मैम मुझे पहले तो रेनबो मैसेज देना था कि मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, और मैं मेरे को ये जो रेनबो के प्रोग्राम है बहुत अच्छे लगते हैं, और जी जानकारी बहुत अच्छी लगती है, गाने बहुत अच्छे लगते हैं। उसके लिए रेनबो परिवार को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी कि हमारे कार्यक्रमों को आप सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। एक सवाल मेरे अभी दिमाग में आया था, पहले नहीं था। तो मैडम जब रात को हम सोते हैं मच्छर लगते हैं, तो इसके लिए हमें दवाई का उपयोग करना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए?
2: देखो ऐसा है कि मॉस्किटो कंट्रोल मल्टी एजेड वे से होगा, एक तरीके से नहीं होगा। पहली चीज तो आपको घर में साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए ताकि मच्छर ना हो। अगर कहीं पे वाटर स्टोर हो रहा है, वाटर कूलर में या प्लांट पॉट्स में या कहीं भी अगर आप पानी भर के रख रहे हो, उसको कवर्ड रखिए, और कोशिश करिए कि ओपन वाटर खाली ना हो, क्योंकि उसमें मच्छर के लार्वा ब्रीड करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप कोशिश करिए कि कॉटन के कपड़े फुल स्लीव्स कवर करके सोएं। तीसरी चीज आप हाँ जी, अगर आप पजामा जैसे फुल लेंथ लेंगे, और अगर जो आपका नाइट ड्रेस है उसका लेंथ फुल स्लीव्स होगा, तो ऑब्वियसली आपका एरिया कवर हो जाता है, मच्छर वहां काट नहीं पाएंगे। बाकी फिर उसके बाद आप कर सकते हैं कि आजकल इंसेक्टिसाइड इम्प्रेग्नेटेड नेट्स आती हैं, आप वो लगा सकते हैं, और बॉडी क्रीम्स आती हैं इंसेक्टिसाइड्स वाली, तो आप वो यूज कर सकते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। हमारे एक और श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो।
4: हेलो
0: जी,
4: शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
0: चट्ठा जी स्वागत है, प्रश्न कर लें।
4: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
2: नमस्कार चट्ठा जी।
4: डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि तीन जो आपने वेक्टर बोन डिजीज के बारे में बताया, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया,
2: जी
4: तो इनके अलावा कोई ऐसे भी वेक्टर बोन डिजीज है जो हमारे देश में विदेश से एंटर करते हैं और जिनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है, कृपया बताने का कष्ट करें।
0: जी
2: हमारे देश में जापानीज एनकेफेलाइटिस विदेश से आया, वेस्ट नाइल फीवर आया है, जीका वायरस के केसेस आए थे, तो ऑब्वियसली अगर ये कंट्रोल नहीं होंगे तो फिर ये थोड़े ज्यादा फेटल हैं, ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करते हैं।
0: जी तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया चट्टा जी, और इन पे भी हम कार्यक्रम करेंगे जरूर। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो मुख्यतः भारत में वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हो रही हैं, जिस पर हमारा केंद्र ज्यादा मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया पर है। तो एक छोटा सा हम गाना सुनते हैं और फिर जल्दी से आते हैं। बहुत खूबसूरत ये गीत है, और इस गीत को सुनेंगे और उसके बाद आपके प्रश्नों को भी हम जरूर लेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, करते रहिए हमें फोन और लिखते रहिए हमें मैसेज। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आप हैं अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और मेरे साथ हैं मेरे आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर प्रिंसी जैन। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, अभी गीत से पहले हमने कुछ बातें की थी सिम्टम्स के बारे में, कैसे मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया को हम पहचान सकते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, जब कंफर्मेशन करना होता है, कुछ सिम्टम्स आपने बताए पर जब पेशेंट आता है तो आप कंफर्म करेंगे मेडिसिन देने से पहले कि क्या है उसको, तो ये क्या टेस्ट ब्लड टेस्ट होते हैं या कोई और तरीका भी होता है?
2: जनरली ब्लड टेस्ट होते हैं फॉर, जैसे अभी हमारे पास रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, वो किट्स होती हैं। आपने ड्रॉप ऑफ ब्लड डाला तो आपको एक लाइन और एक और लाइन से कंट्रोल और पेशेंट की लाइन से कंफर्म होगा। तो ये मलेरिया के लिए भी है, डेंगू के लिए भी है, चिकनगुनिया के लिए भी है, बट इनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। सेंसिटिविटी इज हाउ मच आर दे टेलिंग यू कि ये डिजीज हो सकती है एंड स्पेसिफिसिटी इज हाउ मच आर दे टेलिंग यू कि कंफर्म डिजीज है। तो जब हम मास डायग्नोसिस करते हैं कम्युनिटी में तो हमें सेंसिटिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ये कर पाए कि ये डिजीज हो सकती है। कंफर्म हम बाद में कर लेंगे। तो कॉन्फर्मेशन के लिए जो टेस्ट होते हैं मलेरिया के लिए, जनरली हम पेरिफेरल ब्लड फिल्म और मलेरिया एंटीजन टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको ब्लड फिल्म ड्रॉप ऑफ ब्लड से बनाते हैं और अगर उसमें आपको मलेरियल पैरासाइट दिख रहा है तो वो कन्फर्म है, या फिर एंटीजन टेस्ट। ऐसे ही जब आप रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हो चिकनगुनिया और डेंगू के लिए बाय किट, अगर आपको कन्फर्म, मतलब दिस इज फॉर सेंसिटिविटी, अगर स्पेसिफिसिटी कन्फर्मेशन ज्यादा चाहिए तो उसके लिए हमारे पास IgM एंटीबॉडीज होती हैं, वो जनरली 5 to 7 days में डेवलप होती है। इनिशियली हम NS1 एंटीजन करते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है वी विल स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट, बट अगर हमें फिर भी डाउट है, हमारा डायग्नोसिस नहीं फिट बैठ रहा है, वी विल गो फॉर दी फर्दर कन्फर्मेशन विच इज डन बाय यूजिंग दी IgM एंटीबॉडीज जो कि ELISA मेथड से होती हैं। तो अगर IgM एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ रही है तो इट इज द कन्फर्मेशन।
1: जी, तो ये कई केसेस में तो इनकी शायद आवश्यकता पड़ती नहीं होगी, क्योंकि जैसा आपने शुरू में बताया कि ये सेल्फ लिमिटिंग है और कई बार आप घर में भी रहकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, कोई खास ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो।
2: देखो तो, मलेरिया के लिए हमें एंटी मलेरियल्स लेने पड़ते।
1: तो वही मैं एक्चुअली जानना चाह रही थी कि ये कब पता चले। हमारे सुनने वाले हैं वो इस समय सोच रहे होंगे कि अगर ये हमें हो गया तो कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जो आप बता रही हैं और कुछ सिम्टम्स नहीं भी होंगे, तो कब वो ऐसा समझें रेड फ्लैग कि अब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहा है हमारा केस।
2: देखो ऐसा होता है कि जिसे हाई ग्रेड 100 के ऊपर 101-102 डिग्री फीवर आ रहा है, ठंड लग रही है जोर से और दांत किटकिट कर रहे हैं और फीवर जो है जो स्पॉन्टेनियसली उतर जा रहा है विद लॉट ऑफ स्वेटिंग, तो ये जनरली मलेरिया में होता है। अगर कंसिस्टेंटली हाई ग्रेड फीवर चल रहा है या आपको स्किन पे कोई रैशेज आने लग गए तो जनरली ये डेंगू और चिकनगुनिया में होता है। ठीक है, अब आप कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हो, तो अगर आपको जैसे पीले आना शुरू हो गया या सांस में दिक्कत होनी शुरू हो गई या यूरिन ब्लैक होना शुरू हो गया या फिर स्किन पे कहीं रैशेज, जो पेटिकल रैशेज बोलते हैं, अंडरनीथ द स्किन ब्लीडिंग्स होती हैं, वैसा लगा या गम नोज माउथ से कहीं से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई या आप बैठे से उठ रहे हो और आपको चक्कर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप उठ रहे हो तो बीपी फॉल कर रहा है, तो दीज आर ऑल द रेड फ्लैग साइंस, यू शुड सी द डॉक्टर्स।
1: ये हमें एक मैसेज लिखकर भेजा है यशपाल जी ने द्वारका दिल्ली से कि नमस्कार शालिनी जी एंड डॉक्टर मैम, टू क्वेश्चन है इनके। वेक्टर बॉर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड मस्किटो, वेयर इन्फेक्शन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम
2: एनिमल्स।
1: हाँ, ये एक तो ये क्वेश्चन था इनका, और दूसरा ये है फॉर लास्ट 1 ईयर इनकी CBC रिपोर्ट नॉर्मल आई है एक्सेप्ट दैट प्लेटलेट काउंट्स जो है वो बहुत कम है, अराउंड 90,000 की रेंज में है। वॉट कैन बी द रीजन एंड किस तरह से मैं काउंट बढ़ा सकता हूँ प्लेटलेट्स का नेचुरली?
2: सी, जो आपका प्लेटलेट्स कम है ना वो वेक्टर बॉर्न डिजीज कॉज नहीं लग रहा है आपका, क्योंकि वेक्टर बॉर्न डिजीज में डेफिनेटली आपको इन्फेक्शन के साइंस आएंगे, फीवर आएंगे, लिवर इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर अदर, आपका सिर्फ प्लेटलेट कम हो रहा है। तो बेसिकली प्लेटलेट मल्टीपल डिसऑर्डर्स में कम हो सकता है अदर देन इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन बींग दी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाती है एंड इट अटैक्स अ पर्टिकुलर सेल्स। जो प्लेटलेट आपके लोअर साइड पे है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का भी एक पार्ट हो सकते हैं, उसके लिए एक अलग वर्कअप करना पड़ता है।
1: तो इनको दिखाना जरूरी
2: है, इनको डेफिनेटली दिखाना चाहिए, हेमाटोलॉजिस्ट जो ब्लड के डॉक्टर होते हैं उनसे ओपिनियन ले सकते हैं।
1: जी जी, ये क्वेश्चन एक अलग सा है पर मैं ले रही हूँ, आप बताएं। परिधि लिख रही है दिल्ली से कि यंग किड्स टेंड टू हैव लाइस इन देयर हेयर, जो जू होती है, इज देयर एनी सीरियस डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू देम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? सेकंड क्वेश्चन है कि कैन डिजीज ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम टिक्स टू पेट्स इन ह्यूमन एंड ह्यूमंस? जो पेट नो सॉरी सेकंड क्वेश्चन ये है कि टिक्स जो पेट्स में होती हैं उनसे
2: लाइस फर्स्ट आई आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन सो लाइस कैन कॉज पेडिक्यूलोसिस सो स्कैल्प में भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं दे कैन क्रिएट इन्फेक्शन इन द स्कैल्प जनरली दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर देर इज नो वेक्टर रिक्वायर्ड फॉर दैट वन थिंग इज दिस
1: वेक्टर नहीं है इसमें कोई
2: उसमें वेक्टर नहीं है वो यू टेकिंग योर किड इन योर हैंड या यू टॉकिंग टू समवन
1: डायरेक्ट कॉन्टेक्ट
2: सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड एक तो ये है दूसरा आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग द टिक्स सो दैट इज अ गुड क्वेश्चन उससे दे कैन ऑल्सो कॉज वेक्टर बॉर्न डिजीजेस सच एज रिकेट्सियल फीवर हो सकता है लाइम्स डिजीज हो सकती है बोरेलियासिस वगैरह हो सकता है
1: तो ये पेट्स में अगर
2: अगर है तो टिक्स से आपको ट्रांसमिट हो सकता है सो कीप योर पेट्स क्लीन एंड वैक्सीनेटेड
1: तो ये बहुत जरूरी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये इन्होंने लिखा है मनोहर लाल गांधी जी ने चाणक्य चौक गाजियाबाद से अगर 3 या 4 दिन में बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करें क्या इसके बाद कोई विशेष ट्रीटमेंट करवाना चाहिए कुछ लोग कमजोर प्रवृत्ति के पतले दुबले होते हैं ऐसे में बुखार हो जाए भूख नहीं लगे कुछ भी खाने से अगर उल्टी होने लगे कुछ भी खाने की इच्छा ना हो ऐसे में दवा कैसे और किस तरह खिलाएं जैसे कहा जाता है ना दवाई खाने से पहले कुछ खाना जरूरी है पर वो खा ही नहीं पा रहा है तो ये इनका प्रश्न है कि डॉक्टर अक्सर कहते हैं कुछ खाओ पहले और फिर दवाई लो तो अगर वो खा ही नहीं रहा है तो हम क्या करें नमस्कार भी बहुत भेज रहे हैं वो आपको भी और मुझे तो
2: नमस्कार जी देखिए ऐसा होता है कि अगर आपको फीवर है 3 डेज तक हम वायरल फीवर को ज्यादा ट्रीट नहीं करते हैं बस फीवर कम करने के लिए पैरासीटामोल की जो गोली होती है वो देते हैं ठीक है या फिर कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं नॉर्मल वाटर में कपड़ा डिप करके बॉडी पार्ट्स पे रख के टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करते हैं अच्छा फीवर के साथ क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं तो उनकी वजह से आपका फीवर भी हो सकता है आपकी भूख भी कम हो सकती है और नोजिया वॉमिटिंग उल्टियां भी हो सकती हैं तो अगर फीवर डाउन जाएगा तो ये चीजें ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगी बट बियॉन्ड 3 डेज अगर फीवर हो रहा है और बाकी जो हमने रेड फ्लैग साइंस मलेरिया और डेंगू चिकनगुनिया के लिए बात की उसमें जैसे आप कह रहे हो वॉमिटिंग परसिस्टेंट हो रही है यू शुड सी द डॉक्टर बट अगर कभी कभार जैसे इनिशियल फर्स्ट वॉमिटिंग हुई तो आप उल्टी की दवाई दे सकते हो पेरिनॉम के नाम से भी आती है बट वो मतलब ये है कि अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यू शुड सी द डॉक्टर और जो आप कह रहे हो कि जो आप खाली पेट दवाई मतलब वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ज्यादातर ड्रग्स होते हैं उनसे पेट में गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस रहते हैं तो वो ऑलरेडी पेशेंट वॉमिट कर रहा है अगर गैस्ट्राइटिस और हो गया तो वॉमिटिंग्स बढ़ जाते हैं तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा अगर खा नहीं पा रहे तो फ्लूइड वगैरह लेके कुछ या एक छोटा सा जैसे 1 बिस्किट विद हेल्प तो थोड़ा सा कुछ लेके आप दवाई लोगे तो वो गैस्ट्राइटिस वाले पार्ट से आप बच पाओगे
1: जी जी तो ऐसा नहीं है कि पूरा भरपेट भोजन करना है फिर दवाई लेनी है
2: एक दो बिस्किट्स ले लीजिए थोड़ा फ्लूइड्स ले
1: बिल्कुल थोड़ा बहुत और फ्लूइड की बात आपने की ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ पी लें वो और उसके बाद दवाई ले लें तो डॉक्टर साहब ये बताइए जैसा आपने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं और खासतौर पर जब हम डेंगू की बात करते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशंस में हम आमतौर पर सुनते हैं कि प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाते हैं और जब प्लेटलेट्स डाउन होते हैं तो एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उसका सिम्टम क्या होता है अगर टेस्ट कराना ही एक सिम्टम है कि सबसे पहले टेस्ट कराओ तो पता चलेगा डाउन हो या कुछ अपने आप से पता लगता है कोई वीकनेस या कोई ऐसी फीलिंग होती है
2: मैम जो आप कह रहे हो जनरली प्लेटलेट्स जो होते हैं ना डाउन होने का एज सच सिम्टम नहीं होता डेंगी फीवर अगर हो रहा है और इट इज कॉल्ड अ ब्रेक बोन फीवर क्योंकि आप इतने वीक फील करते हो इतना बॉडी एक मांसपेशियों में दर्द होता है और इतने जॉइंट पेन्स होते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली वीक लगने लग जाते हैं
1: अच्छा
2: बट प्लेटलेट जो होते हैं ना जैसे कुछ पेशेंट्स में प्लेटलेट हम कब डाउन बोलते हैं जब बिलो 1 लाख है तो कुछ पेशेंट्स में वो अबव 1 लाख रहते हैं कुछ पेशेंट्स में बिलो 1 लाख जाते हैं अप टू 50,000 जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बट कई बार क्या होता है जैसे बिलो 50,000

0: अगर आपका प्लेटलेट 1 लाख और 50,000 के बीच में भी है तो डेंगू चिकनगुनिया में आपको, स्पेशली डेंगू में आपको डेली प्लेटलेट मॉनिटरिंग करनी चाहिए
1: तो ये जब प्लेटलेट अगर पता चल जाता है कि ये डेंजरस लेवल पे है तो फिर क्या किया जाता है, किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जाता है?
0: सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि हमें पेशेंट को एडमिट करना और ऑब्जर्व करना है कि कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही. बिलो 50,000 भी हम इन्फ्यूज नहीं करते, बट इफ इट इज गोइंग बिलो 10,000 टू 50,000 में वी एडमिट द पेशेंट, वी ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एनी ब्लीडिंग, उनका रेगुलर बीपी टेम्परेचर वगैरह हम मॉनिटर करते रहते हैं और उनको फ्लूइड्स देते रहते हैं. डेंगू में थर्ड स्पेस लॉसेस बोलते हैं, वो जैसे अगर आपके वेसल से निकल के पानी हार्ट के आसपास इकट्ठा हो गया या पेट में इकट्ठा हो गया तो दिस इज कॉल्ड, या लंग्स में इकट्ठा हो गया तो थर्ड स्पेस लॉसेज होते हैं, तो उसमें आपका बीपी वगैरह फॉल करता है. तो हम उस चीज को हाइड्रेट करते रहते हैं, पेशेंट को देखते रहते हैं. बट बिलो 10,000 जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम प्लेटलेट्स इन्फ्यूज कर दें क्योंकि उसमें ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है.
1: जी, आप सुन रहे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर. हम एक गीत सुनेंगे अब यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर लौट कर आएंगे. आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, आपकी फोन कॉल्स हम तक पहुंच रही हैं, इसी तरह से जुड़े रहिए. आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के बारे में. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रिंसी जैन, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन. तो इसी तरह से कार्यक्रम में हम और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे. आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और आज हम बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की। एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं पहले। हेलो जी।
1: हेलो
0: जी।
1: सबसे पहले तो रेडियो डॉक्टर की डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंकर शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार।
1: और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा दिल्ली से। उम्र मेरी 48 वर्ष है
2: जी।
1: डॉक्टर साहिबा सवाल मेरा ये है कि इन दिनों में हीट ह्यूमिडिटी इतनी पड़ती है बहुत ज्यादा और मुझे ना क्या है कि हीट ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, मैं व्हाइट स्किन का मालिक हूँ।
2: क्या एक बार रिपीट करेंगे किस चीज के प्रॉब्लम है?
1: व्हाइट स्किन, व्हाइट जो फॉर्नर होते हैं जैसे।
2: अच्छा विटिलाइगो आप बोल रहे हो?
1: अच्छा मेरी स्किन है मैम
2: जी।
1: ह्यूमिडिटी मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होती है
2: जी जी।
1: तो अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि मच्छर ही नहीं मैम, इसमें बरसाती कीड़े और हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियाँ
2: जी।
1: उससे होता ये है कि पेट में गर्म गैस जलन और दूसरी चीज की मैम फ्रिज में जो खुजली और आंखों में जलन चुभन और पैरों में फंगस जिसे हम कुकुरमुत्ता रोग कहते हैं ना।
2: अच्छा।
1: तो इन ये कुछ परेशानी से जो है दो चार हो रहा हो, अगर कुछ बारे में प्रकाश डाले, अगर घरेलू उपाय हो तो और बढ़िया। हॉस्पिटल में बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती
0: है। चलिए डॉक्टर साहब समझ गए हैं, आपको जवाब दे रही हैं, आप रेडियो पे सुने
2: जी। देखिए एक तो वही है कि आपको अगर लाइट से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के अपने आपको कवर करके रखिए। और दूसरी चीज़ है कि अम्ब्रेला लेके निकल सकते हैं। बाकी आपका जो फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए आपको हाइजीन मेंटेन करनी होगी। और अगर ये है कि आपको फिर भी फंगल इन्फेक्शन नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आपको थोड़ा ड्राई रखना होगा। फंगस ग्रो करती है वेट एरियाज में, जैसे हाथों के फिंगर्स के बीच की स्किन हो गई या फिर ग्रोइन एरिया हो गया, तो क्लीन रखना है, ड्राई रखना है। पाउडर यूज कर सकते हैं और अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, स्किन डॉक्टर को
0: जी। हमारे पास एक मैसेज भेजा है पुरुषोत्तम पाटिल जी ने जलगांव महाराष्ट्र से। इन्होंने दो प्रश्न किए हैं डॉक्टर साहब आपसे और ये कह रहे हैं कि आई सफर्ड फ्रॉम चिकनगुनिया इन 2006।
2: ओके।
0: व्हेन एवर डेंगू मॉस्किटो बाइट्स मी आई फील ज्वाइंट पेन एंड पेन इन फिंगर्स ऑन द साइड वेयर द मॉस्किटो बाइट्स। अब इनको ये कैसे पता है कि डेंगू ही का मच्छर काटता है? मुझे लगता है ये शायद मस्किटो ही लिखना चाह रहे होंगे कि जब भी मच्छर काटता है तो इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा दर्द हो रहा है। तो क्या इसका कारण यह है कि मुझे चिकनगुनिया हुआ था? एक तो ये प्रश्न है इनका, आप इसका दे दें, मैं दूसरा प्रश्न बाद में ले लूं।
2: 2006 में हुआ था, 26 आने।
0: हाँ जी जी जी, वही
2: बहुत अनलाइकली रिलेशन लगता है, मे बी मोर ऑफ अ फियर यू हैव। आई अग्री, आप सही कह रहे हो, कई बार चिकनगुनिया के पेन्स लंबे खिंच जाते हैं, दो दो तीन तीन साल तक खिंच जाते हैं, बट 20 years is a very long time.
0: इतना नहीं गिर सकते जी। और दूसरा इन्होंने प्रश्न किया है कि डेंगू में जब प्लेटलेट्स रिड्यूस होते हैं, ये तो हमें पता है, तो हम उनको नेचुरली कैसे इंक्रीज कर सकते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ? इन्होंने कुछ नाम भी लिखे हैं, तो इस पे कुछ आप कहेंगे?
2: दिस क्वेश्चन आई वांट टू आंसर इन द वे दैट आप जो बात कर रहे हो दैट डजंट गो विद एलोपैथी। इन एलोपैथी सर हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है जो प्लेटलेट्स आपके राइज करा पाए। एज योर इन्फेक्शन सेटल्स, एज एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी वायरस सेटल, जैसे जैसे आपका इम्यून सिस्टम रिकवर करता है प्लेटलेट्स ग्रेजुअली राइज करना शुरू कर देते हैं एंड देन इट स्टेज रिजन। बट ये जो चीजें हैं कि जो प्लेटलेट राइज कराते हैं, गोट्स मिल्क हो गया, पपाया आई हर्ड, वी हैव नो साइंटिफिक बेसिस, वी हैव नो साइंटिफिक स्टडीज टू सपोर्ट देम
0: जी। और ये लिखकर हमें भेजा है हमारे एक श्रोता ने उमेश कुमार खयाला से, इनका एक प्रश्न पहले भी लिया था कि ये जो मच्छर के काटने से बुखार होता है इसको जब दवाई शुरू होती है या इसका पीरियड कितना होता है, कब कितने दिन में ये ठीक होता
2: है? जनरली आप मलेरिया ले लो या डेंगू चिकनगुनिया ले लो, इट इज 3 to 7 days।
0: अच्छा,
2: आपके विद बाइट ऑफ मस्किटो एंड अपियरेंस ऑफ सिम्टम्स में।
0: और ये प्रश्न हमें लिखकर भेजा है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है कि गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट टू मैडम शालिनी मित्तल जी एंड हर टीम हु आर वर्किंग ऑन सच वंडरफुल प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन इनका ये है कि विच पीपल आर मोर वल्नरेबल टू दीज डिजीजेस।
2: ओके, तो आप हाई रिस्क ग्रुप्स की बात कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो हाई रिस्क ग्रुप्स में हमारे पास इन्फेंट्स आते हैं, बच्चे लेस देन 1 ईयर, मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड एज, बाकी जिनको कोमॉर्बिडिटीज है जैसे डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, हार्ट डिजीज हो गई, किडनी डिजीज हो गई, या जिनको हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिनको बोलते हैं ना सिकल सेल एनीमिया होता है, या फिर कुछ मतलब हीमोग्लोबिन की डिजीजेज होती हैं, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, एचआईवी पॉजिटिव हो गए, एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस है, या एक्टिव हेपेटाइटिस बी सी, दीज आर ऑल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, या फिर कुछ पेशेंट जो स्पेसिफिक दवाइयां ले रहे हैं जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, वो ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम लो करते हैं, या फिर जो जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है या मेलिग्नेंसीज हैं, जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स ले रहे हैं जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, आइसोथायोप्रिम, देयर आर एन नंबर ऑफ इम्यूनो, जैकस्टैट इनहिबिटर्स, बहुत सारे होते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे, या फिर जो ऑलरेडी एंटीकोएगुलेशन ले रहे हैं जैसे जिनको हार्ट वाल्व्स हैं या जिनको कोई थ्रोम्बोसिस की बीमारी है. सो दीज आर ऑल हाई रिस्क ग्रुप्स, दे शुड बी मोर केयरफुल अबाउट द डिजीजेस, एनी डिजीज इनफैक्ट.
0: मतलब कोई भी और अगर आपको डिजीज है, मुझे ये समझ में आया है कि कोई भी और डिजीज है
2: एज ग्रुप तो, या फिर कोई और सीवियर डिजीज है, या कोई आप ऐसी मेडिकेशन ले,
0: इम्यूनिटी प्लेज अ मेजर रोल.
2: एब्सोल्युटली.
0: ये हमें लिखकर भेजा है सुशील ठाकुर जी ने दिल्ली से. इनकी उम्र है 41 इयर्स और लिख रहे हैं, जब भी मैं पैदल चलता हूं तो टांगों में दर्द होता है, डॉक्टर को दिखलाया तो उन्होंने सिर्फ मुझे पैरासिटामोल दे दिया. तो क्या कहीं से ये रिलेटेड हो रहा है हमारे आज के जो टॉपिक है, या कुछ अलग ही है ये?
2: ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. देर आर एन नंबर ऑफ कॉजेज जिससे टांगों में दर्द हो सकता है. मोस्ट कॉमन इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी है.
0: अच्छा.
2: सो पैरासिटामोल बेसिकली वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन है जो आपके दर्द को कम करने में हेल्प करती है, दैट्स व्हाई उन्होंने दिया होगा. अदरवाइज आप एक बार, ऐसा तो नहीं है ना कि आपके चलते चलते चप्पल निकल जाती है, आप गिर जाते हो, बैठे से उठ नहीं पाते, अगर वो सब सिम्टम्स नहीं है तो नॉन स्पेसिफिक मसल पेन्स जैसा ही लग रहा है.
0: अच्छा. तो इन्हें कुछ ऐसा खास कुछ करने की जरूरत नहीं है?
2: इट डजंट लुक कि ये बहुत स्केरी है, बट फिर भी आप एक बार इवेल्युएट करा सकते हो अपने कैल्शियम विटामिन डी लेवल्स,
0: और विटामिन डी का चेक करा ले.
2: एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो ये कि आप अपने रेगुलर रूटीन में ना, हर इंडियन को एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करनी चाहिए. वी आर नॉट डूइंग इट,
0: दैट रियली एक मेजर रोल है.
2: वो इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, स्ट्रेस लेवल्स भी कम करता है, और मसल्स एंड बोन मास बिल्ड करने में भी हेल्प करता है.
0: यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स आए हैं अभी तक डॉक्टर प्रिंसी, वो हर कार्यक्रम में हमारी यही बात हुई है कि एक्सरसाइज का एक मेजर रोल होता है.
2: लाइफस्टाइल
0: स्ट्रेस है, और ये लाइफस्टाइल डिजीजेस जो भी हैं हमारी, वो सारी कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड तो हैं
2: मेजरली. नाउ अ डेज इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस रादर देन दीज इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीजेस, और उसमें आपके लाइफस्टाइल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है.
0: जी. तो इसी तरह से कार्यक्रम में हम और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे. आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ.

0: रेडियो डॉक्टर में आप हैं अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और मेरे साथ हैं मेरे आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर प्रिंसी जैन. आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली. हमें मोहम्मद इम्तियाज लिख रहे हैं कीर्ति नगर नई दिल्ली से नमस्कार. तो नमस्ते कर रहे हैं सिर्फ इन्होंने बस ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि मैं भी कार्यक्रम सुन रहा हूं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. इसी तरह से सुनते रहिए जुड़े रहिए हमारे साथ. मेरा अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर जो मैं चाह रही थी कि हमारे सभी सुनने वालों तक आप पहुंचाएं कि ट्रीटमेंट की तो हमने बात की, सिम्टम्स की भी हमने बात की, हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, प्रिवेंशन जो कि एक बहुत मेजर एक डिजीज के लिए होता है कि प्रिवेंशन किया जाए तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है. और मुझे लगता है कि अगर हम सही तरीके से कार्य करें तो हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को तो प्रिवेंट कर ही सकते हैं.
1: मैम दिस इज अ गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस प्रोग्राम
0: विच वॉज केप्ट फॉर द लास्ट.
1: थैंक यू फॉर आस्किंग दिस. बेसिकली जो मेन हमारा जो समरी है ना इट गोज विद इट. वेक्टर बॉर्न डिजीजेस आर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल इफ वी वर्क ऑन द प्रिवेंशन. बेसिकली हमारे वेक्टर्स क्या हैं भाई, आप मेनली देख रहे हो मेन चंक इज फ्रॉम द मस्किटोज. सो इफ वी प्रिवेंट द स्प्रेड एंड द ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स कंट्रोल हो जाएंगे. सो फॉर दिस वी कैन गो फॉर पर्सनल मेजर्स एंड देन वी हैव जनरल पब्लिक मेजर्स. तो उसमें बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल होता है. तो पर्सनल मेजर्स में हम लोग अपनी एज वी हैव ऑलरेडी टॉक कि हम मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स लिक्विड्स यूज कर सकते हैं, रूम में कॉइल्स मैट्स यूज कर सकते हैं, अपने आप को फुली कवर्ड रख सकते हैं.

0: और स्लीपिंग के टाइम पे खुद को या बच्चे को मॉस्किटो नेट्स या मॉस्किटो क्रीम लगा के कर सकते हैं. दिस इज दी पर्सनल मेजर. फॉर द कम्युनिटी वी हैव बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल. वी कैन स्प्रेड दी अवेयरनेस अबाउट दिस वेक्टर बॉर्न डिजीजेस एंड हाउ टू कंट्रोल देम. वी कैन टेक डिफरेंट कम्युनिटीज एंड स्प्रेड थ्रू दी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स. तो कम्युनिटी में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी हो रहा है कि अगर आप देखो कि हम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट वी आर लिविंग इन अ ट्रॉपिकल कंट्री जो ऑलरेडी एक ससेप्टेबिलिटी है टुवर्ड्स द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्किटोज बिकॉज हमारा बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है. दूसरा इफ यू लुक एट इट वी आर फास्टली हेडिंग टुवर्ड्स द मेजर डिफोरेस्टेशन. सो डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ दीज माइक्रोब्स ऑल दीज पैरासाइट्स इज ऑल्सो लीडिंग एंड दिस फास्ट अर्बनाइजेशन. ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉज है कि इतना ज्यादा हमारे पास अब ये डिजीजेस का लोड आ रहा है. तो इफ वी ग्रो मोर प्लांट्स इफ वी रिप्लेस दोज फॉरेस्ट एंड अर्बनाइजेशन को भी अगर हम एक कंट्रोल रेट पे चलाएं दैट वुड बी वन स्टेप टूवर्ड्स दी कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज. देन इन इंडिविजुअल एट इंडिविजुअल लेवल अपने घर में हम लाइक वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि कहीं भी पानी भर रहा है या आप कहीं भी देख रहे हो कि ब्रीडिंग ग्राउंड मस्किटो ब्रीड कर रहे हैं आप उन प्लेसेस को खाली कर सकते हैं हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं. देन आप यूज कर सकते हो कंट्रोल मेजर्स. कंट्रोल मेजर्स में आपके जैसे लार्वीवोरस फिश होते हैं उसमें आपका गैम्बूजिया होता है या फिर आप बायोसाइड्स यूज कर सकते हो जो कि इन मस्किटो को किल करे. सो दैट कैन बी अ नेचुरल बायोसाइड और इट कैन बी अ केमिकल बायोसाइड. तो नेचुरल बायोसाइड्स में आप परमेथ्रिन यूज कर सकते हो कैम्फर यूज कर सकते हो एक जिरेनियोल करके आता है लेमन ग्रास ऑयल उसको यूज कर सकते हो जो हम इंटरनल फॉगिंग करते हैं ना घर में फॉगिंग वगैरह करने जैसे तो उसमें वो जनरली परमेथ्रिन यूज कर रहे हैं.
1: अच्छा.
0: और आउटसाइड द हाउस आप केमिकल्स यूज कर सकते हो जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स यूज होते हैं मेलेथियन ऑर्गेनो क्लोरीन्स यूज होते हैं. डीडीटी पहले यूज किया जाता था अब कंपेरेटिवली कम यूज हो गया बट डीडीटी इज वन ऑफ द केमिकल दैट कैन बी यूज. या फिर प्रोपॉक्सर के नाम से कार्बामेट्स आता है वो आपके जो क्रीम्स यूज होते हैं ना उसमें भी होता है जो मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स होते हैं. सो दीज मेजर्स यू कैन यूज टू प्रिवेंट.
1: जी काफी विस्तार से आपने बताया कि किन किन क्योंकि एक्चुअली जैसा आपने कहा इस कार्यक्रम का यही है कि हम कैसे इससे बचाव करें. तो बहुत सारे मेथड्स हैं. जरूरत है सिर्फ अवेयरनेस की कि आप ये जानें कि किस तरह से हम किस चीज को आपने बताया बहुत सारे तरह से केमिकली भी ऑइंटमेंट भी
0: कम्युनिटी लेवल पे भी वी कैन हैव एन नंबर ऑफ एंड वी हैव एन नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर गोइंग ऑन.
1: जी जी
0: विल बी कवरिंग.
1: बिल्कुल मैं ये किसी और कार्यक्रम में हम बात करेंगे अब तो समय इतना नहीं है कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे मेजर्स ले रही है कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या. वो भी मैनमेड ही होते हैं कई बार. तो
0: एज वी जस्ट स्पोक अबाउट देम कि एक तो एक हमारी कंट्री की लोकेशन वी आर द ट्रॉपिकल कंट्री वी हैव अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सो दैट इज वन थिंग. अगर आप कश्मीर वगैरह में जाके देखेंगे वी डोंट हैव दोज मस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड. सो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ आर कंट्री इज हॉट एंड ह्यूमिड दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग अगेन डिफॉरेस्टेशन.
1: जी
0: सो प्लीज अटेंशन पे करिए फॉर दी ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड प्लांटेशंस. और एक जो अर्बनाइजेशन इतना रैपिड रेट पे हो रहा है दीज आर द इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट
1: और इसको भी जैसे आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो अवेयरनेस है वो इस दिशा में भी हो रही है तो इसमें भी हमें सपोर्ट करना चाहिए और इस चीज को फैलाना चाहिए कि कोशिश करें कि कम से कम पेड़ कटें. आप लगाएं पेड़ों को
0: ग्रो करिए. अगर आप पेड़ बेसिकली अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो आप इनका हैबिटेट रिप्लेस कर रहे हो तो दे विल गो बैक टू देयर हैबिटेट दे विल नॉट स्टे इन आवर होम्स.
1: बिल्कुल सही बात है. और आज हमने विस्तार से बात की वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की. तो चलते चलते कोई और मैसेज आपका हो या कुछ आप बताना चाहें कि ट्रीटमेंट के बाद जैसे ट्रीटमेंट हो जाता है और लोग रिकवर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि दोबारा ना हो. और सेकेंडली कुछ ऐसा खान पान रख सकते हैं जिससे कि वो जल्दी से कवर अप हो जाए उनकी वीकनेस.
0: मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये जो जैसे डेंगू चिकनगुनिया के फीवर हो गए इवन पोस्ट मलेरिया भी पेशेंट फील लॉट ऑफ वीकनेस.
1: यस
0: सो जनरली एक तो हमारा इनके साथ एसोसिएटेड लिवर डिसफंक्शन होता है तो दैट इज मेन कॉज. तो आप ये कर सकते हो कि एक तो अपने आपको अच्छे से हाइड्रेटेड रखो. टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स विद सॉल्ट. प्लेन फ्लूइड्स विल नॉट हेल्प. टेक लॉट ऑफ फ्लूइड्स. मेंटेन गुड ब्लड प्रेशर. और एक न्यूट्रिशियस डाइट होती है. ऐसा नहीं है जैसे आजकल बच्चे हैं जंक फूड खा रहे हैं सब. आप रिकवर करते हो टेक अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट. आप सिर्फ ये नहीं है कि चपाती खा रहे हो सिर्फ ये नहीं है कि वेजिटेबल्स खा रहे हो. फ्रूट्स इंक्लूड करिए. एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड करिए. मल्टीविटामिन आप ले सकते हो अगर डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जनरली आप रिकवर कर जाते हो तो कर जाते हो बट इफ द डॉक्टर इज कॉलिंग यू फॉर सम फॉलो अप प्लीज डू दैट फॉलो अप. डू नॉट स्किप दैट.
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई. अवेयरनेस के साथ साथ आप अपनी डॉक्टर को भी जरूर सुने. उनको इग्नोर ना करें. अगर डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको आना है फॉलोअप के लिए तो जरूर पहुंचे। तो आज का कार्यक्रम हमें यहीं समेटना होगा। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और प्रश्न पूछे और जवाब आपको बिल्कुल सही सही मिले। हमारी आज की रेडियो डॉक्टर रही डॉक्टर प्रिंसी जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। और ढेर सारी बातें डॉक्टर साहब ने, काम की बातें हम सबको बताई। और उम्मीद है कि ये आपको आज का रेडियो डॉक्टर का अंक पसंद आया होगा। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो आप health@aaidelhi.com पर हमें लिख सकते हैं। और अब हमें इजाजत लेनी होगी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और मेरी तरफ से स्वीकार करिए नमस्कार। और डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक स्थगित। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक दूसरे के देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारतीय रेलवे ने 440 करोड़ रुपए की लागत से निमपुरा पश्चिम आउटर कैबिन और दक्षिण पूर्वी रेलवे के मिदनापुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। भारत का आसियान में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि रुकी रहेगी। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है।

0: इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और कॉमनवेल्थ गेम्स आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

हम एक और नए दिन की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। आज भारत के लिए एक और नया दिन, आज इस विश्व के लिए एक और नया दिन। नई उम्मीदें, नए ख्वाब या फिर नई चिंताएं, नए लक्ष्य, नई आवाज, नई पहचान, नया दिन, नई रात, नए लोग, नए विचार, और इन सब के पीछे भारत की वो नींव जो सदियों से कई करोड़ लोगों ने रखी। संदेश टू सोल्जर्स में हम बात करते हैं हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के उन जवानों की, उन अफसरों की, जिन्होंने अपने शौर्य की गाथा गाने पर मजबूर कर दिया, देश के प्रति अपना योगदान, अपना समर्पण देने के लिए वो पीछे नहीं हटे। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम पर, महावीर चक्र से सम्मानित 1965 और 1971 के वॉर हीरो, इंडियन एयरफोर्स के लेट विंग कमांडर पद्मनाभा गौतम। कैनबरा की फ्लाइंग स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, अफ्रीका के देश कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा रहे। 1965 और 1971 की जंग में हमारे लड़ाकू विमान को उन्होंने दुश्मन की उस चालाकी, उस चुनौती के सामने ला खड़ा कर दिया और भारत के लिए विजयी परचम लहराया। आज हम फिर से गाथा गाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स की, जिसके साथ न जाने कितने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ और जाबाज पायलट इसका हिस्सा है।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हम बात कर रहे हैं लेट विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की महावीर चक्र से जो सम्मानित किए गए। इसके साथ साथ उन्हें वायुसेना मेडल भी दिया गया। विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, वक्त है अपने वॉर हीरो से अपने देशवासियों को मिलाने का। इसीलिए संदेश टू सोल्जर्स में हम लेकर आए हैं कहानी नहीं बल्कि हकीकत विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की। इनका जन्म 23 जुलाई 1933 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और पढ़ाई लिखाई से जुड़ी थी इनकी फैमिली, इनका परिवार। आपके पिता श्री नीलकंठ पद्मनाभ एक जाने माने फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे और अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे। मां भी एक अकम्प्लिश

एजुकेटर थी और एजुकेशन की फील्ड में काफी देर तक जुड़ी नहीं और रिटायर हुई डायरेक्टर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऐसी एक समृद्ध पढ़े लिखे परिवार से पद्मनाभ गौतम आगे निकल कर आए और फिर इंडियन एयरफोर्स की 16 स्क्वाड्रन के साथ जा जुड़े। इनकी कहानी अगर वॉर की बात की जाए तो शुरू होती है 1965 की लड़ाई के साथ, लेकिन हम इनके साथ सबसे पहले 1961 की कहानी बताना चाहेंगे जहां उन्हें एक अहम इंटरनेशनल मिशन के लिए चुना गया, कांगो में यूनाइटेड नेशंस का पहला भारतीय संचालित शांति रक्षा अभियान। 6 दिसंबर 1961 को उन्हें काटंगा में कोल वेजी एयरफील्ड पर हमला करने के लिए कहा गया, जो एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरा मिशन था। ये एक अहम रणनीतिक बेस था जिस पर काटंगा की सेनाओं का कब्जा था। इस एयरफील्ड का इस्तेमाल यूएन की जमीनी टुकड़ियों पर हवाई हमले करने के लिए किया जा रहा था। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स शांति बनाए रखने के लिए चल रहे अभियानों की सफलता पर गंभीर रूप से इसे देख रही थी और जो पीस मिशन चल रहा था वहां पे यह खतरा मंडरा रहा था। ये टास्क इंडियन एयरफोर्स की उस टुकड़ी को दिया गया जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के साथ कांगो में डेप्यूटेशन पर थे। उस दिन जिस दिन हमला होना था, बेहद खराब मौसम और दुश्मन की जबरदस्त गोलीबारी का सामना करने के बावजूद, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट रहे गौतम पद्मनाभ गौतम ने असाधारण साहस और उड़ान कौशल का प्रदर्शन देते हुए भारी सुरक्षा वाले एयरफील्ड पर बहुत सारी बमबारी की और ये था लो फ्लाई मिशन। हमले के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक एक फोगा विमान को भी नष्ट कर दिया एयर टू एयर कॉम्बैट में।

एयर टू एयर कॉम्बैट के बाद लो फ्लाइंग मिशन था, जहां पर बहुत सारे कैनन जो हैं वो दागे जा रहे थे। जो जहाज पद्मनाभ गौतम उड़ा रहे थे वो था कैनबरा, और भारी गोलाबारी के बीच में लो फ्लाई करते हुए उन्होंने टारगेट अचीव करना था।

एक फौगा विमान जो यूनाइटेड नेशंस की जमीनी सेनाओं को लगातार परेशान कर रहा था, उसको शांत करना बहुत जरूरी था। फौगा विमान को बेकार करने के अलावा तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने जमीन पर खड़े कटंगा के तीन अन्य विमानों को भी बेकार कर दिया और एयरफील्ड पर अब निशाना साधने लगे।

दुश्मन के एयरफील्ड पर इस तरह का हमला करना जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत भारी है। इससे दुश्मन के ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त झटका लगा और फिर जो होना था वो हुआ, यानी दुश्मनों के हौसले जो थे वो परास्त कर दिए गए। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम को एलिजाबेथ विले के ऊपर कई और सफल उड़ानें भरने के लिए कहा गया और कटंगा की सेनाओं के साथ भीषण लड़ाई में उलझी यूनाइटेड नेशंस की जमीनी टुकड़ियों को करीबी हवाई सहायता प्रदान करने के लिए और मिशंस दिए गए। उनके सटीक और समय पर किए गए हवाई हमलों ने जमीनी अभियानों को सफल बनाने और दुश्मन की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। इन अभियानों के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम ने असाधारण बहादुरी, पेशेवर उत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का प्रदर्शन किया और अक्सर विपरीत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया। उनके कार्यों ने यूएन सेनाओं की ऑपरेशनल सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय वायुसेना का मान बढ़ाया। दुश्मन की कार्रवाई का सामना करते हुए उनकी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के सम्मान में तत्कालीन फ्लाइट लेफ्टिनेंट गौतम को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद स्क्वाड्रन लीडर और उसके बाद विंग कमांडर बनने की कहानी और उसके बाद आने वाली बड़ी चुनौतियां, क्योंकि 1961 के बाद जब भारत के लिए लड़ने के लिए उन्हें अपने मिग फाइटर्स और कैनबरा फाइटर्स उड़ाने पड़े तो वो भीषण युद्ध था। पाकिस्तान और भारत का भीषण युद्ध 1965 वॉर, जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स तब भी तैयार थी। क्या हुआ विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के साथ?

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में, महावीर चक्र से सम्मानित। 1965-1971 जंग के जांबाज इंडियन एयरफोर्स के पायलट। इससे पहले कि हम उनकी शौर्य गाथा आगे आपको सुनाएं, एक नजर डालते हैं अपने वॉर हीरो के बचपन की। पद्मनाभ गौतम वो तीन भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपने दो छोटे भाइयों अशोक और अजीत के साथ उनका गहरा लगाव था। कम उम्र से ही विंग कमांडर गौतम में एक मकसद और सेवा भाव की भावना दिखाई देती थी। इसी कर्तव्य भावना के कारण वो जॉइंट सर्विसेज विंग, जो आज की नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसका एक शुरुआती रूप था और तब देहरादून में स्थित थी। इस एकेडमी के तीसरे कोर्स में वो शामिल हुए। उन्होंने बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर 60वें पायलट कोर्स के हिस्से के तौर पर अपनी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की और 1 अप्रैल 1953 को भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। अपनी शुरुआती ऑपरेशनल पोस्टिंग के दौरान उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन हलवारा से उस दौर के कुछ सबसे मशहूर फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे स्पिटफायर और वैम्पायर, ऐसे जहाज उड़ाए। बाद में वो डिसॉल्ट तूफानी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले स्क्वाड्रन में चले गए, जिससे कई तरह के एयरक्राफ्ट पर उनके लंबे और शानदार फ्लाइंग करियर की शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व और सिखाने की क्षमता को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 1956 में उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में ट्रेनिंग के लिए चुना।

उनके बढ़ते अनुभव के कारण उन्हें एक इंटरनेशनल असाइनमेंट भी मिला और उन्हें फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर इराक भेजा गया, जहां उन्होंने मिग 15 और मिग 17 एयरक्राफ्ट उड़ाए और इराकी वायुसेना की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। आज संदेश टू सोल्जर्स में हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम के बारे में।

कहते हैं अगर एयरफोर्स में आना हो तो एक जज्बा होना चाहिए। कुछ देर पहले हमने बताया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट पद्मनाभ गौतम, और कांगो में स्थित यूएन पीस कीपिंग फोर्स को उन्होंने किस तरह से वायुसेना के वो मदद प्रदान की जिससे मिशंस सक्सेसफुल हुए। ट्रेनिंग, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, और उसके बाद 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग। पाकिस्तान ने विदेशी एयरक्राफ्ट्स लेकर, टैंक्स लेकर एक चुनौती पेश करनी चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ। इंडियन एयरफोर्स के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे पायलट्स रात दिन रेनक

एक समय था जब भारत दोस्ती का हाथ विश्व भर में हर देश के साथ दोस्ती का वो प्रस्ताव लेकर जाता था। कई जगह ये सोचा गया कि भारत कमजोर देश है, इसलिए शायद दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन जिसने भी भारत से दोस्ती की, भारत का हाथ पकड़ के, उस देश को मालूम पड़ा कि इस हाथ में बहुत ताकत है और केवल ताकतवर इंसान ही दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अगर वो दोस्ती वाला हाथ मुट्ठी में बदल गया तो देश की ताकत, देश की असली ताकत वो सबके सामने आ जाएगी। आज विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम की बात हम कर रहे हैं और उनके शौर्य की गाथा गाते हुए हम 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई की तरफ चलते हैं। स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर वो आगरा में जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट में वापस आ गए थे। जब लड़ाई शुरू होने के आसार थे तब वो कमांडिंग ऑफिसर थे और उनकी शानदार लीडरशिप में JBCU यानी जेट बॉम्बर कन्वर्जन यूनिट ने, जो असल में एक ट्रेनिंग यूनिट थी, लड़ाई में एक फ्रंट लाइन ऑपरेशनल स्क्वाड्रन की तरह जोश और प्रोफेशनलिज्म के साथ हिस्सा लिया। यूनिट ने डीप पेनिट्रेशन बॉम्बिंग मिशन और सटीक टारगेट मार्किंग जैसे कामों में खुद को साबित किया। पाकिस्तान के पास उस समय सेबर जेट्स थे जिसके गुणगान वो गाया करता था, लेकिन विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम ने और उनकी टीम ने ऐसे काम किए जो बहुत ज्यादा हुनर और हिम्मत की जरूरत मांगते थे। उन्होंने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में कई साहसी उड़ानें भरी, रिकॉनोसेंस मिशन या फिर अटैकिंग मिशंस। ऐसे काम करने के लिए एक खास आत्मविश्वास और सटीकता की जरूरत थी।

लेकिन पद्मनाभ गौतम ने ऐसे मिशंस किए जो बहुत असरदार थे। कहते हैं कि उनके मिशन इतने असरदार थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री इतिहासकार भी उनकी बहादुरी और असरदार काम को अनमने ढंग से ही सही लेकिन सम्मान के साथ मानते थे। 1965 वॉर के ऑपरेशन के दौरान उनकी निडर लीडरशिप और जबरदस्त बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

एक ऐसा मिशन जो सिर्फ कैनबरा के जहाज ही कर सकते थे। कहते हैं भारत के पास उस समय कैनबरा के जहाज थे जो एक बहुत ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों की रिकॉनोसमिशन में फोटोग्राफी करके यहां अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होते थे। मिशन्स तो लो फ्लाइंग बॉम्बिंग के लिए भी पद्मनाभ गौतम ने किए हैं।

भारत के बहुत सारे अटैक्स रात में किए जाते थे, और रात में अटैक करना प्रिसिजन यानी सटीकता मांगते थे। सेबर सुपरसोनिक जहाज थे जिनका सामना इंडियन एयरफोर्स को करना था, और हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाकर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को चौंका रही थी। और उसी के बीच में पेशावर पे अटैक करके पद्मनाभन गौतम और उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की।

1965 और वो एक ऐसा दौर जहां हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पैटन टैंक और सेबर जेट का डर दिखाकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश नाकाम।

एक ऐसा मिशन जो सिर्फ कैनबरा के जहाज ही कर सकते थे। कहते हैं भारत के पास उस समय कैनबरा के जहाज थे जो एक बहुत ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों की रिकॉनसा मिशन में फोटोग्राफी करके यहां अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी मददगार साबित होते थे। कुछ मिशंस तो लो फ्लाइंग बॉम्बिंग के लिए भी पद्मनाभ गौतम ने किए हैं।

भारत के बहुत सारे अटैक्स रात में किए जाते थे, और रात में अटैक करना प्रिसिजन यानी सटीकता मांगते थे। सेबर सुपरसोनिक जहाज थे जिनका सामना इंडियन एयरफोर्स को करना था, और हर बार कोई ना कोई नया प्लान बनाकर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को चौंका रही थी। और उसी के बीच में पेशावर पे अटैक करके पद्मनाभन गौतम और उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की।

1965 और वो एक ऐसा दौर जहां हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे। पैटन टैंक और सेबर जेट का डर दिखाकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश नाकाम।

आज संदेश टू सोल्जर्स में हम याद कर रहे हैं विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को, महावीर चक्र से सम्मानित। और हमने बताया कि किस तरीके से 1965 के युद्ध में भी जेट बॉम्बर कन्वर्शन यूनिट को कमांड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर के तौर पर। लेकिन आगे चल के उनका इंतजार कर रही थी 1971 की भारत पाकिस्तान की एक और जंग। उस समय वो विंग कमांडर गोरखपुर से ऑपरेट करने वाले 16 स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे। स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम बन गए। स्क्वाड्रन ने पूर्वी मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई, जहां भारतीय सेना ने बहुत तेजी से और निर्णायक जीत हासिल की। उनकी लीडरशिप में 16 स्क्वाड्रन ने दुश्मन के इलाके में बहुत जोखिम वाले बॉम्बिंग मिशन पूरे किए, जिससे पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। रणनीतिक सटीकता और हिम्मत के साथ किए गए इन साहसी ऑपरेशन ने युद्ध में भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। 1971 की लड़ाई के दौरान उनकी बेहतरीन सेवा और बेमिसाल बहादुरी के लिए विंग कमांडर गौतम को उनके महावीर चक्र के साथ बार से सम्मानित किया गया। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में यह दुर्लभ सम्मान पाने वाले केवल 2 अधिकारियों में से एक बने। युद्ध के बाद 1972 की शुरुआत में विंग कमांडर गौतम को एयरफोर्स स्टेशन पूना, जो अब लोहेगांव के नाम से जाना जाता है, ऑफिसर इंचार्ज फ्लाइंग के तौर पर तैनात किया गया। 25 नवंबर 1972 को MiG-21 में एक रूटीन उड़ान के दौरान एक दुखद घटना घटी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान में फ्लेम आउट हुआ, यानी उड़ान के दौरान इंजन का फेल होना, जिससे उनके पास इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग की कोशिश करने के अलावा और कोई चारा न बचा। विमान और खुद को बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद जबरदस्ती लैंडिंग के दौरान उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और कुछ ही देर बाद वो शहीद हो गए।

कमांडर पद्मनाभ गौतम भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक रहे हैं। उनका करियर असाधारण साहस, अटूट समर्पण और देश सेवा के प्रति पक्के संकल्प से भरा रहा। 1965 और 1971 दोनों युद्ध के दौरान उन्होंने बमबारी के अहम मिशनों को नेतृत्व किया, जिन्होंने दुश्मन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया और भारत के पक्ष में निर्णायक बढ़त दिलाई। उनके निडर कारनामे खासकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर किए गए ऑपरेशन आज भी हमारे जांबाज पायलट्स को बहुत इंस्पायर करते हैं। वो लड़ाई हो 1965 की, 71 की, कारगिल युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो।

फिर ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन एयरफोर्स खड़ी है डटकर उस तिरंगे के लिए, आपके लिए, हमारे लिए।

संदेश टू सोल्जर्स में आज हमने आप सबको रूबरू कराया, विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम, महावीर चक्र से सम्मानित भारत के जांबाज पायलट से। 16 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की, और आज उनकी जन्मतिथि है, इसीलिए आज का संदेश टू सोल्जर्स समर्पित किया हमने विंग कमांडर पद्मनाभ गौतम को। आशा करते हैं आकाशवाणी की ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। ये कहानी हमने इसलिए सुनाई क्योंकि याद है ना वो अल्फाज, तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले दोपहर 12 बजे पहली बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग करने की अपील की।
1: वो बहाना जुड़ रहा, आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में, शुरू में दो मोड़ तक अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप

0: कह सकते हैं तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप, वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं।
1: उधर राज्यसभा को भी नीट मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री मनोहर लाल ने बताया कि जून 2026 तक देश की वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता 548 गीगावाट से अधिक हो गई है। अप्रैल 2014 से लेकर अब तक लगभग 324.7 गीगावाट तक की नई उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। इससे देश बिजली की कमी वाले राज्य से बिजली की पर्याप्तता वाले देश में गया है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए संवाद और कूटनीति के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर बल दिया है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने आज कहा कि सरकार ईरान सहित संघर्ष में शामिल पक्षों तथा अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकारों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। मनीला में 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंस मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। श्री जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी से भी मुलाकात की और खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्यम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक छठे ओवर में 3 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition protest over various issues including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion. Union Minister and Leader of the House Jagat Prakash Nadda criticized the opposition, terming its conduct as highly irresponsible. He alleged that the opposition neither wants a discussion nor is willing to allow the House to function. Leader of the opposition Mallikarjun Kharge demanded the resignation of the Union Education Minister, saying that without his resignation, the discussion will not happen. He said that Congress is not shying away from discussion. Prime Minister Narendra Modi announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks and asserted that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said,

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুনীশ শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के निर्णय की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया है।
2: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ. सिंह ने कहा कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती हुई घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट पर 108 रन बना लिए हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present with a dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found. Prime Minister Narendra Modi announced that the centre will set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks and asserted that protecting students' future remains the government's top priority. In a social media post, the Prime Minister said that nothing is more important than the welfare and future of the youth of the country. His statement comes amid ongoing student protests at Delhi's Jantar Mantar over the NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion. Union Minister and Leader of the House Jagat Prakash Nadda criticized the opposition, terming its conduct as highly irresponsible. He alleged that the opposition neither wants a discussion nor is willing to allow the House to function. Leader of the opposition Mallikarjun Kharge demanded the resignation of the Union Education Minister, saying that without his resignation, the discussion will not happen. He said that Congress is not shying away from discussion.

0: तत्वावधाने मुंबई केन्द्रात् देशस्य प्रथमं रेडियो प्रसारणं नभसि गुञ्जितम्। तदनन्तरं षट्त्रिंशदधिक नवदशतमस्य वर्षस्य जून मासस्य अष्टमे दिनांके इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इति संस्था ऑल इंडिया रेडियो इति नामना परिगणिता। अस्माकं वार्ताहरस्यानुसारं अयम् उत्सवः सूचना प्रदाने शिक्षा प्रसारे मनोरंजन विधाने राष्ट्रस्य एकसूत्रे निबंधने च प्रसारण जगतः प्रायः एकशताब्द्याः अवदानं स्मरति। दिवसोऽयं भारतस्य विकासयात्रायां शैक्षणिक प्रसारे सांस्कृतिक संरक्षणे च प्रसारणस्य मुख्य भूमिकां विशेषतः प्रकाशयति। स्वातंत्र्य आंदोलनादारभ्य राष्ट्र निर्माण पर्यन्तं विशेषतः ग्रामीण भारते सूचना प्रसारणे साक्षरता संवर्धने स्वास्थ्य जागरूकतायां कृषि ज्ञानस्य विचारे च आकाशवाण्याः अभूतपूर्वा भूमिका आसीत्। सप्तपञ्चाशदुत्तर नवदशतमे वर्षे राष्ट्रिय प्रसाराय आकाशवाणी इति दिव्यं नाम स्वीकृतम्। ततः लोकप्रिय चलच्चित्र संगीत प्रधानयुक्ता विविध भारती सेवा प्रारब्धा। युगात् युगं यावत् जनसामान्यस्य सेवां कुर्वती आकाशवाणी बहुजनहिताय बहुजनसुखाय इति स्वकीयस्य ध्येयवाक्यस्य यथार्थं पालनं करोति। राष्ट्रिय प्रसारण दिवस केवलं तांत्रिक प्रगतेः न अपितु विविधतापूर्णस्य राष्ट्रस्य एकीकरणस्य सूचना शिक्षा मनोरंजनानां च तस्याः शाश्वत शक्तेः उत्सवः वर्तते। अद्य सायं स्कॉटलैंड देशस्य ग्लास्गो नगरे 23तमः राष्ट्रमंडल क्रीडा महोत्सवः समारप्स्यते। दश दिनात्मक दीर्घ्यस्मिन् महास्पर्धा आयोजने चतुस्सप्ततिः राष्ट्राणां क्रीडादलानि भागं ग्रहीष्यन्ति। ओलंपिक पदक विजेतारौ नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लोवलीना, बोरगोहेन चस्मिन् महाकुंभे भारतस्य प्रतिनिधित्वं विधास्यन्ति। इति वार्ताः।
1: প্ৰিয় শ্ৰোতা, বাতৰি মাজতে উভতি আহিছো যুৱবাণী অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম এফৰ 99.9 মিটাৰত, 1035 কিলোহাৰ্টছত আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টছত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লৈছো কৰবী আচাৰ্যৰ কণ্ঠৰ আধুনিক গীত।

0: শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। অনুষ্ঠানটি আজিলৈ ইমানতেই অন্ত পৰিল।
1: প্ৰতিটো ঘৰৰে বাণী আকাশবাণী, সকলোৰে হৃদয়ৰ বাণী আকাশবাণী। আমি আগবাঢ়িছো আপোনালোকৰ সৈতে অন্তৰংগ সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ। মাত্ৰ এটা ক্লিকতে আমাৰ কেন্দ্ৰবোৰৰ অনুষ্ঠান লাইভ, সংগীত, নাটক, খেল আৰু প্ৰতিটো পলৰ নিৰ্ভৰযোগ্য বাতৰিৰ সৈতে আমাৰ ৱেবছাইট akashbani.gov.in-ত। নতুন ভাৰত, নতুন আকাশবাণী।
0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টছত আৰু টিআৰএম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টছত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতেই অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধিয়া, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
4: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमराह, उनके संग मैं भी रहूंगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
5: At the level of the Prime Minister,
6: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
3: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
7: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
3: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौतों में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
5: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
3: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.10 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
6: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में